ऐसी कुछ गाने गाए हुए पद्म श्री हंसराज हंस की आवाज विच। समय इस वेले 8:57 हो गए ने। तो सुन रहे अपना मनपसंद पंजाबी गीतों का प्रोग्राम मेला गीतों का सवार 99.9 FM तो श्याम कुमार दे नाल। हफ्तावारी प्रोग्राम हर एतवार सवेरे 8 बजे तो लैके 10 बजे तक सवार 99.9 FM की फ्रीकुएंसी तो सिडनी तो पेश किया जाता। तो सिडनी टाइम 8 बजे तो लैके 10 बजे तक दुनिया के किसी कोने जे बैठ के सुनते हैं तो सिडनी टाइम के हिसाब न मिला के www.swr999.com.au ते सुन सकते हो। चलो 2 मिनट की प्रोमो सुनते हैं, उस तो बाद फिर प्रोग्राम लैके हाजिर हूँ।

0: आ जाओ भाई वापस ले जाओ।
1: वापस जाना
0: बहुत है
2: नहीं
0: नहीं अच्छा लगा
1: नहीं।
2: रेडी फॉर प्रेजेंट गिले गिले गिले
3: गिले गिले गिले
2: मामा
3: मामा
2: वेलकम इन योर प्रेजेंट। चलो एनीवे नाउ आई एम गोइंग। थैंक यू सो मच। बाय सी यू
1: बाय।